0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: ट्रेंड के हो तो आवाज भी ट्रेंड की है। GFM 88 नेटवर्क ट्रेंड की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578 6।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद।

अभी उतनी आवाज नहीं आई, महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर सारे ही महफिल वाले, हाँ ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाएं, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जितनी ये आशिक अब निकालेंगे समाथर में बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है बावाजे बुलंद। हैदर बरगा सकीन कोई देखी।

0: फोन अरे हैदरी।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: GAFM नेटवर्क पर।
1: छड़ींदासीं अमरीकी सदर ट्रंप जी नई धमकी। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ट्रंप जो चवण आए तो अंगारे ढी अमरीका ईरान में गालू थी ईरान से मुआहदो करण से जोर डो पो ईरान मुआहदो न कर तो तवानाई सेक्टर ए इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर छड़ींदासीं। अमरीकी सदर ट्रंप एक वधिक यूटर्न वठंदे आपने हुरमस से 20% टैक्स लगने वो फैसलो भी वापस वी छो। संदस चवण आए तो ईरानी क्यादत की पॉलिसी ईरान के मुकम्मल तबाही जो रस्ते से वठी वनी रही है। ईरानी बंदरगाहन ईरानी कार्गो जो मुकम्मल नाकबंदी लागू कंदासीं तेहरान के पूरी ताकत से निशानो बणायूं पिया।
2: ईरानी सरजमीन के इंच इंच जो दिफा कंदासीं। ईरानी सदर मसूद पज़दीकचान जो अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी से रद अमल। मसूद पज़दीकचान जो चवण आहे त ईरान खे तक़सीम करण जूं कोशिशूं कंदड़ ॿुधाइनि त जंग में उन्हनि खे छा हासिल कयो आहे। ट्रंप ॿुधी छॾे त अमेरिकी जारियत जो ताक़त सां जवाब ॾींदासीं, हर क़ीमत ते वतन जी हिफ़ाज़त कंदासीं।
1: अमेरिका जा चौथे ॾींहं बि ईरान ते हमला जारी। हंगाम बम्बूर बंदरगाह अब्बास कशम कशम हरमज़गान सेरक ऐं हाजी आबाद धमाकनि सां गूंजी उथिया। अमरीकी फ़ौज चवण आहे त विच ओभर में 20 खां वधीक जंगी जहाज़नि समेत केतिरा ई जंगी जहाज मिशन में हिसो वठी रहिया आहिनि। ईरान जे बंदरगाह ऐं सामूंडी इलाक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ जहाज़नि जी ॿीहर नाकाबंदी कई वई आहे।
2: ईरान जा बि अमेरिकी अॾनि ते हमला जारी। बहरीन ऐं कुवैत में हथियारनि जे ज़खीरनि खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब जो चवणु आहे त कुवैत जे अली अल सालिम एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। अर्दन जे अर्ज़क अॾे ते अमेरिकी ठाकनि खे ड्रोन्स ज़रिए निशानो बणायो वियो।
1: बलोचिस्तान में खारजी इनकलाब ऑपरेशन शाबान जारी। वधीक ॿ दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियनि जो अंग वधी 85 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सेज जी कार्रवाईनि दौरान दहशतगर्दनि जी गाॾी खे कामयाबी सां निशानो बणाए वधीक ॿिनि दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। पाक फ़ौज एफ़सी पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन दौरान हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाईनि ज़रिए खारजुनि खे निशानो बणायो पियो वञे। ऑपरेशन शाबान ऐं ॿिनि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर ते 123 खारजी मारिजी चुका आहिनि।
2: फीफा वर्ल्ड जे पहिरीं सेमीफाइनल में स्पेन जी टीम फ्रांस खे शिकस्त ॾेई फाइनल में पहुची वई। स्पेन जी टीम ॿुड़ीअ जे मुक़ाबले में फ्रांस खे ॿिनि गोल्स सां शिकस्त ॾिनी। स्पेन जी टीम 16 सालनि बाद फाइनल में पहुती आहे। मदान जो जशन।
3: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: FM 90.4।
1: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ जीए FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ॻोठो वींदकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252578 6।
2: जी हा, 2315525786।
1: जीए FM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को कर गती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज
1: हो GFM 90.4।
4: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार
5: असांजे स्टेशन में बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 3125256
5: G 331 525 786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी तो यो की छो छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थो यो किसो ताके आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खनी हलो आउते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुले कांधी थी

ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਮੁੰਜੇ ਮੱਥਾ ਮੌਤ ਆਇਓ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਛਾ ਚਵੰਦਸ ਉਹ ਤੇ

0: अजीब।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ईरान ऐं अमरीका विच में तकरार शिदत अख़्तियार करे पियो। अमरीकी सदर ट्रंप जे ईरानी बिजली घरनि खे निशानो बणाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बि हमलनि जी बंदिश ताईं अबन हुरमस खे न खोलण जो ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त ईरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि खे निशानो बणायो वेंदो। पाकिस्तान इनकलाब चयो आहे त ईरान जूं बरामद रोकियूं वयूं आहिनि। खिते जी तमाई रसद मुतासिर थी सघे थी। मुआशी तुड़े असली दबाव जो मुनासिब जवाब ॾिनो वेंदो।

अमेरिकी फौज जे चौथे ॾींहुं बि ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते लॻातार 7 कलाक बमबारी। सेनेट काम पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। ईरान फौज जो बि अमेरिका ते जवाबी वार। कुवैत, बहरीन ऐं अर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त कुवैत, बहरीन ऐं अर्दन में अमेरिकी अॾनि ते हमले अमेरिकी हमलनि बाद कया विया। ईरानी फौज अर्दन ते हमलनि जी वीडियो भी जारी करे छॾी।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हां 2315 2575
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

जी वक्त हुआ जाता है 11:18 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट इन द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। इसके अलावा वो लोग जिन लोगों की सालगिरह है, उनको कहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके अलावा जो लोग बीमार हैं

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4।

0: मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86
0: जी हाँ 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: दिल में वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ.
1: It's love you and you and me. You and me. I would forgive you जैसे तू हो एक सुरंग में उसके एंड में तुझको रोशनी दिखी.
2: I love.
1: That's how I see you. खुद को मेरी नजर से देख. It's love you and you and me.
2: It's you and me.
1: मैं ऐसे टूटता कि टूटते हैं तारे क्या वो आज भी है मुंतजर मुख्तसर एक मुलाकात का फिर कभी मिल पाए ना. जल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत उरूज से जवाल देखे हैं नूर बहुत न तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत मेरे हाथ में है कलम कला और शौक हर खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को जिस हिसाब से रखा है दिल पे बोझ मेरे जैसे कारमा पीछे पड़ा है हाथ दो गाने गाए बहुत दिल दुखाए बहुत न तुम्हें आए शर्म न हमें आए मौत मिसिंग हूँ इस मिनट नेक्स्ट मिनट आई एम साइको इंडस्ट्री करे फॉलो ब्रांड्स गो वेयर आई गो ये मेरा फ्लेक्स नहीं है लाइफ है सेंड माय चेक मुझे बातचीत नहीं चाहिए.

0: गवा यार रवादार मेरे साथ रहे सदा आबाद ये आवाज I rap for a purpose ये करियर एक कॉज You expect me to be perfect and I'm just full of flaws कैसे लिखता हूँ ये verses क्या करता हूँ महसूस मैं बिना ताज का बादशाह got nothing to lose I'm crossing lines just to cancel out the booze अब ना दिल से निकले आरज़ू जब से दिल से निकली आज तू दिल था मेरा गोशा है सुकून एक क्यों बना गई है ऐसे बाजार तू
1: अफसाने अब लिखता नहीं हूँ मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ मत

0: आज अब इस हाथ में वो आग बेटे, पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बेटे, इम्तिहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा, निखारी जान लेवा उर्दू रैप को सांस देता, किससे लड़ू जंग सब वाकिफ है ये मैदान मेरा, रैप मेरी जान मैं कराची के लिए जान दे रहा, ये लड़के लिखते मुझे दिख
1: जी। नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से?
2: आपसे पहले क्या चल लाजाना से बात कर रहा हूँ, आपका प्यारा सा शोर सुन रहा हूँ, मुझे सॉन्ग सुनाओ दीबा सार का।
1: पहले
2: सुंदर से सबरा सा प्यारा मानो है,
1: गा के सुनाए ना, शो का सेगमेंट कर रहे हैं।
2: सुंदर से सबरा सा प्यारा मानो है,
1: किसका गाना है ये वैसे? इतना सा गाएंगे बस?
2: दीदा सर का सुनिए।
1: दीदार
2: दीबा सर,
1: दीबा सहर का सॉन्ग है। ओके, मैं
2: मेरा दोस्त

0: Lucas Chopper.
1: नहीं चल रहा,
0: चलता ही नहीं है तो करूंगी कैसे, मतलब करूंगी ही नहीं तो चलेगा कैसे?
1: प्रोग्राम करो ना आपका, आपके आवाज बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: चले इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ हम प्ले कर रहे हैं नेक्स्ट सॉन्ग।
2: करे क्यों फिकर होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ।
0: इसी के साथ हम ब्रेक पे भी जाएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलोचिस्तान में खारजन खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में वधिक टे दहशतगर्द पहुंची पिया। बलोचिस्तान में पाक फौज पुलिस ऐं एफसी जो गडियल ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़रन मूजिब फोर्सेज जी कार्रवाई में टे दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। ऑपरेशन शाबान में भारतीय दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 88 थी वियो आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दनि जे ताक़तुनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि।
2: ईरान ऐं अमेरिका विच में तकरार शिदत करे वियो। अमेरिकी सदर ट्रम्प जी ईरानी बिजली घरनि खे निशानो बणाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बे हमलनि जी बंदिश ताईं आबना हर्मुस खे न खोलण जो ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रम्प चयो आहे त तेहरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमेरिकी सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं।
1: अमरीकी फ़ौज चोथे ॾींहं बि ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते लगातार 7 कलाक बमबारी। तेहरान जे बहरीन अकाबती कंट्रास सेंटकाम पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज बि अमरीका ते जवाबी वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज उर्दन में अमरीकी अॾनि ते हमलनि जी वीडियो बि जारी करे छॾी। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ईरान जूं हर बरामदात रोकियूं वियूं त खिते जी तवानाई रसद मुतासिर थी सघे थी।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां एनडीए में चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म जे चौमासे जे वसकारन दौरान सूबनि सां राबता वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। एनडीएमए चेयरमैन वज़ीर आज़म खे मूनसून बरसातनि दौरान तयारियुनि बाबति ब्रीफिंग डि॒नी। अॻुवाट इतलाउ वारो निज़ाम फाल बणाइण बाबति बि आगाही डि॒नी वई।
1: हुकूमत पेट्रोल जूं क़ीमतूं रोज़ाने जी बुनियाद ते तय करण ते गौर शुरू करे छॾियो। नए निज़ाम तहत ओकरा रोज़ानो राति जो 12 वॻे पेट्रोल जी क़ीमत जो ऐलान कंदी। ज़रियनि मूजिब हुकूमत तेल जी क़ीमतुनि में पंहिंजो किरदार घटाइण ते गौर करे रही आहे, जंहिं तहत तेल जूं क़ीमतूं रोज़ जे बुनियाद ते तय करण ते गौर कयो पियो वञे। इम्कानी नई निज़ाम तहत ओकरा खे पेट्रोल जूं क़ीमतूं तय करण जो मुकमल इख़्तियार ॾिनो वेंदो, जंहिं बाद ओकरा तेल जूं क़ीमतूं रोज़ तय करे सघंदी।

मुजफ्फरपुर जो शहर में रामपुर में जो पीरवसेंट लिंक रोड से दोहारन जो पुलिस पकड़ते हम लोग गोली लगन से बेलकार परवेज राजपुर सख्त जख्मी गणती वाली हालत में नवाबशाह मुंतकिल वाके बाद जवाबदार फरार पुलिस इलाके में जवाबदारों की गोला शुरू कर छी।

0: पेंशन का रियायत या खैरात न पर मुलाज़िमन जो कानूनी हक आहे सिंध हाई कोर्ट टीएमसी जे रिटायर्ड सेनेटरी वर्कर्स खे पेंशन ऐं राहतूं ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच जो 6 हफ़्तनि में मुलाज़िमन खे राहतूं अदा करण जो हुकुम। अदालत चयो त पेंशन जी अदायगी में देर सरकारी इदारनि जी नाकामी बराबरि आहे।
1: हैदराबाद बरसात यारमंदन नौजवान के गोली हणी कतल कर छो जतो घोट में अनवर के गोली हणी कतल किया वो लाश अस्पताल मुंतकिल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हाँ 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: कभी एक आध घंटे में हो जाती है, तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड और दूसरे रिवराइन फ्लड और ये सारी चीजें होती हैं, और उससे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, ह्यूमन लाइव का लॉस होता है, और इस तरह से बहुत नुकसान होते हैं। तो ये है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बेसिकली कि फ्लड आप ज्यादा तवातर से आने लगे हैं, खासकर फ्लैश फ्लड, और इसी तरह से कभी कभी जब जिस साल बारिशें बहुत कम होती हैं तो उस साल फिर ड्राउट किसी कैफियत हो जाती है, और हीट वेव्स का मुसलसल बढ़ना, यानी कभी शाज नादर की आपने सुना होगा कि हीट वेव इतनी तवातर से या इतनी शिद्दत से पहले आया करती थी, अब ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा तवातर से आना शुरू हो गए हैं हीट वेव्स। अभी आपने देखा कि यूरोप में कितनी सीवियर हीट हुई, यानी हजारों लोग मर गए, वो लोग के यहाँ जहाँ यूरोप में और एक्सट्रीम नॉर्थ में कभी घरों में पंखे स्टार्ट करने का भी यानी लगाने का भी तसव्वुर नहीं होता था, वहां ऐसा मौसम होता था, लेकिन वहां भी टेम्परेचर 40 को क्रॉस कर गए। तो ये सारी चीजें जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से मुमकिन हुआ एक तरह से इनका।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम खास तौर पे बात करें पाकिस्तान की, तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली कंट्रीज में क्यों शामिल है, क्या वजह है इसकी?
0: देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसी पहले 10 मालिक की, अगर आप पिछले वही मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 2 दहाइयों का 3 दहाइयों का डाटा निकाल के देखें तो कभी पाकिस्तान पहले नंबर पर, कभी 5वें पर, कभी 7वें पर, मतलब ये कि पहले 10-15 मुझे एक फिगर याद आ रही है कि पिछले 30 सालों में या 20 सालों में या 30 सालों में पाकिस्तान मतलब पहले 15 नंबर पर फाल करता है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना है। देखें, इसी तरह के इवेंट्स दूसरे ममालिक भी आते हैं, अमेरिका में देखिए आप कितने बड़े बड़े हरिकेन आते हैं उनकी जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से, लेकिन उन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा है, उनकी एक तरह से वो उन चीजों का सहार जाते हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमजोर है, और दूसरा ये कि वल्नरेबल हम ज्यादा, यानी हम जद पजीर ज्यादा है, हमारी जो अगर खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, तो हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम तो जैसा तैसा है, लेकिन ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उस चीज को नहीं सहार सकता, और आपकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप शुमाली इलाकों में देखिए, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो ग्लाफ इवेंट्स होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी ग्लेशियर्स के मुसलसल दर्जा रात के बढ़ने से ग्लेशियर्स का पिघलना और फिर एक झील का बन जाना, और फिर दर्जा रात मजीद बढ़ता है या ऊपर से बारिश होती है तो वो झील फट जाती है, और डाउन स्ट्रीम जितनी आबादियां होती हैं, जितनी इमलाक, जितने इंसानी जाने, वो सारी

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अवेलेबल कराए सकूता ठीक है। तो बिल्कुल सी अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरतियां बढ़ाते रहिए और मुझे बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आदिल, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशाहीं जी खुशाहीं, और कहते हैं कि वो अकेला भी हो मालूम नहीं, ये तमाशा भी हो मालूम नहीं, उसने मुड़कर भी नहीं देखा मुझे और देखा भी हो मालूम नहीं, लोग तो प्यारे बहुत होते हैं, कोई तुमसा भी हो मालूम नहीं। ओके नजीर को समय सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, खुश आमदीद। और जी आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर सिटी, वालेकुम अस्सलाम, हाय मासूमा कैसी है, मासूमा ठीक है आप बताएं आप कैसे। नजीर भाई कहते कि दुनिया में सब कुछ आरजी है, जो दूसरों ने दिया वही है और जो दूसरों के लिए है जाएंगे वही जाएगा, अपना सिर्फ एक ही नेक अमल साथ लेकर जाएंगे। चले मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात शेयर करी लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और आकाश अली हमारे साथ मौजूद, कहते हाय आप कैसी है, ठीक ठाक है, मैं आकाश अली पीर जादव फ्रॉम सिटी मोर, आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी सारी फैमिली आपका शो बहुत शौक से सुनती है, थैंक यू आपकी सारी फैमिली को। और जनाब खुश आमदीद एंड वेलकम करते हैं। और यहाँ पर मुनव्वर अब्बास हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, लाहौर से आप हमारा शो सुन रहे जी, खुश आमदीद। आमिर कहते हैं मासूमा ये पोइट्री चलो आपकी दुनिया छोड़ देते हैं, मासूमा सुना है लोग बहुत याद करते हैं दूर चले जाने के बाद, कुछ ही करते हैं सारे नहीं करते, और ऐसा नहीं कि आप लोगों को याद दिलाने के चक्कर में बस प्याला ही कर जाए, ऐसा नहीं होता भाई। और उनके अलावा गुलरेज अली चांदी हमारे साथ, कहते हैं सलाम से जो आप कैसी हैं, मोला आपको सलामत रखे, आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा शो है, आज मुझे मास्टर मंसूर का गाना सुनाइएगा, कल मैंने लगाया था आपके लिए, शायद आपने सुना नहीं होगा लेकिन आज भी लगा ही लेंगे। वासा भाई हमें सुन रहे हैं, हेलो इखलाक बलोच आ चुके, कहते फूक छोड़े नहीं ये तो मेरी आदत है बरसों पुरानी। अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं, कहते वेरी नाइस योर शो सिद्रा, क्या तारीफ करें, आवाज अच्छी है और साथ साथ प्रोग्राम गुड है, और सॉन्ग रिक्वेस्ट है जी, मैं कोशिश करती हूँ आपके पसंद का गाना लगा लेंगे ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि व्हाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप अभी तैयारियों में हैं कि हाँ जी हम लगाने वाले हैं। मोहम्मद जमान आ चुके हैं, मोहम्मद जमान भाई गुड आफ्टरनून। सजाद बलोच हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम जी कैसे हैं। बिलाल अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, आज मां भी सवेरा आयम, आज तमाम भी सवेरा पहुंची, आज तमाम की चौथा भली करी आया। इमरान अली अब्बासी हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, रांधन स्टेशन का तमाम सा के बुध पयो, सो मौला अली सलामत एंड वेलकम करते हैं आपको। ओके सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं आप लोगों को अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़े, और ऑप्शंस ये हैं आपके पास कि अगर आपका फोन जो है यानी कि अगर आपके फोन की बैटरी 100% चार्ज हो और आपको इंटरनेट ना मिले ठीक है, और अगर आपके पास इंटरनेट हो लेकिन आपके फोन की बैटरी जो है ना वो 1% चार्ज हो, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, बस एक ही ऑप्शन चूज करना है ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताइए और शामली प्रोग्राम होते जाइए, और आप बताइए कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, और इसी के साथ साथ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर जी आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, बिल्कुल आप सब लोगों को वेलकम इन खुशामदीद। और यहाँ पर जो है ना टाइम हुआ जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास

0: भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहने और सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए. मैं सरा यू जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए. हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हां बुड़ी 361525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

आपका बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, अभी अभी सुनना स्टार्ट किया, उनको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से जो है ना वो टॉपिक क्या पूछा गया है।

ओके सो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि अगर आपके फोन की बैटरी 100% चार्ज हो और आपके पास इंटरनेट ना हो, ठीक है, या आपके पास इंटरनेट हो और आपकी बैटरी एक परसेंट चार्ज हो, तो आप इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज को चूज करने वाले हैं? आपके पास 100% मोबाइल चार्ज हो और इंटरनेट ना हो, चलें कोई बात नहीं, आप सह लेंगे थोड़ा सा, या फिर इंटरनेट हो भाई, हमें इंटरनेट चाहिए चाहे मोबाइल चार्ज हो या ना हो, इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जी। लेकिन आप बताएं कि आप क्या चूज करने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर आप भी वाई चाइज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप उनमें से कौन सा प्रोडक्ट चूज करने वाले हैं? ओके, जैसे पहले से आप जानते हैं कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने सारे अच्छे अच्छे कितने सारे मजे के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाते हैं, वहां से नाम लेकर पाते हैं, और जनाब आप अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो और आपको नहीं मिलता प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 03

1-5-799-0595 ही बाबा नंबर आए जो तुम डायल करी पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सगो था वाइट एशिया तमाम प्रोडक्ट्स जेके भी तुम्हारे इस्तेमाल करण चाहियो था सो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे खबर आए तो केड़ा केड़ा प्रोडक्ट मौजूद है तुम बुधाइंदी तो अगर तुम पांजी स्किन जो ख्याल करण चाहियो था ताकि पांजी स्किन प्यारी आए तो तुम वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सो बाबा वाइट एश ब्यूटी क्रीम जी नाइट क्रीम आए जी तुम राजी टाइम इस्तेमाल कर सो था वाइट एश ब्यूटी क्रीम की सब का बेहतरीन गाल बुधाए तो ही नेचुरल अजा से तैयार थियल प्रोडक्ट है खोड़ मरतबा तुम जरा कंफ्यूज इन गाल में थी वेंदा तो बाबा अगर अस कोई भी प्रोडक्ट हणू था तो खबर इन के अंदर मत केमिक केमिकल हुजन अगर तुम केमिकल का थोड़ा अवॉइड करना है तो करण भी

भी मौजूद है जो कि आपकी स्किन की हिफाजत करेगी, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली। सूरज के इन खतरनाक असरा से जो आपकी स्किन को डल बना देते हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल मार ही देते हैं। तो आपने भी व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो आप व्हाइटिश लवली क्रीम लगाकर चुटकियों में रेडी हो सकते हैं, मेकअप से भी छुटकारा मिल जाएगा। और ये फेयरनेस क्रीम है तो इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, घर का हर एक फर्द इसे इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सारे लोग ही लगाएंगे, ताकि आप अपनी खूबसूरती में बढ़ता हुआ जो है ना निखार देख सके और आपको अंदाजा हो कि वाकई आपके पास भी अब अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम लगाइए और अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और साथ साथ डाल करते जाइए 03-15-799-0595 बुड़ी 315 79-595।

लाल कहते हैं कि कल मुझे सड़क से मोबाइल मिला है जिसका भी है। मेहरबानी करके उसकी हैंड फ्री और चार्जर मुझ तक पहुंचा दे। सही है भाई सही है। और मोहम्मद जमान भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा देंगे। और हैं जी एस एन आर पानी, वालेकुम अस्सलाम, असम यची वयासीन खेड़सा और जिद्रा चाहला उम्मीद खुशा शाद हूं आबाद हूं न याद हूं नहीं विसर बिल्कुल जी शाद आयो आबाद दुआ खपन। अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, डॉक्टर अब्दुल गफार शाहपुर चाकर तालुका शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सांगर से हमारे साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया खुश आमदी। और साजिद हुसैन सुमरो हैं शो नाई से, आपका बहुत शुक्रिया जी। आप हमें सुन रहे हैं फ्रॉम डीआईजी ऑफिस लाड़काना, खुश आमदीद। आमिर कहते हैं टॉपिक 100% चार्ज लाजमी है। ओके जी, उदास लड़की आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम वाले सलामत, कैसी हो प्यारी आरजे, वेलकम टू शो, खुश आमदीद जानू। लियाकत चलिए बासी हमारे साथ ही, सलाम आरजे, बस मोबाइल फुल चार्ज हो बाकी काम हम खुद कर लेंगे। चले ये भी अच्छी बात है। अच्छा उनका अलावा मोहम्मद जमान कहते आंसर सिलेक्शन करेंगे हम बैटरी फुल कीपैड फोन जिसमें आपका शो सुन सके, नेट हम वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, वो भी अलो नहीं है ना, सिर्फ बस फोन चार्ज चाहिए या फिर आपको नेट चाहिए बताएं जरा। तो चलें आपने वैसे चार्जिंग को सिलेक्ट किया है। और सजाद बलोच हमें सुन रहे कहते हैं बैटरी फुल चाहिए बाबा। रिहान अली हमें सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। और सवेरा अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। सवेरा को भी खुश आमदीद। और सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ हैं जी, वेलकम। दर्दे दिल हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। स्वीटी कैसी हैं? और जी हमारे साथ हैं दिल, कहती हैं कि अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता है तो यकीन जानिए आपका वजूद काबिले रश्क है। अल्लाह आप अल्लाह के खास बंदे हैं। बहुत शुक्रिया जी, क्या बात है, इतनी अच्छी बात आपने शेयर कर दी। किशोर भाई कहते सलाम अदा, अज अंदाजो लगायो आऊं कि आए हाँ, दिसो तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता कितना पुराना, तमा लाड़काना में आयो। तुक्का लगा लिया मेरे, देखे कितना सही है। अच्छा इखलाक भाई कहते आंसर 1% मोबाइल चार्ज कर लेंगे और क्या, बिजली तो है ना। हाँ सही। ओके जी, तो खा पैसा ना प्यारा कंदासी बाबा, वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पैसा प्यारा न कयो। आई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो, आई वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट तुम्हें लगे तो ही प्रोडक्ट असने खूबसूरती के मुताबिक आ तो भजन वनो वी अचो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो। साणो साण तुम नंबर से रातो कंदा रहो जी तुम्हें करीबी जनरल स्टोर से ही तुम प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वन, अवेलेबल तरी तो तक वन में आसानी थी। तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइंदा जी सब फास्ट सोना थी वन।

सारे ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एशियन. ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो आप इस्तेमाल कीजिए और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं बताइए, और आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे ये भी बताइए. अच्छा, अब्दुल रजा कहते हैं सवाल जवाब मोबाइल भले केतरी भी पर्सन चार्ज पर नेटवर्क न हूं दो तो कहीं भी कमर जोना है गाल तो तुम्हारा सही जो था. हाँ, मैंने वही आते साथ ही बोला कि आज जो है वो वीडियो में आपको एक नया वीडियो मिल रहा होगा जो कि भाई व्हाइट एश के ना जो फेस वॉश है उसके ऊपर है, और देख सकते हैं आपके कितने अच्छी तरीके से व्हाइट एश का विटामिन सी का जो फेस वॉश है ना ये तैयार किया है, ताकि अगर आप भी इस्तेमाल करें तो ये जो इतनी खूबसूरत सी लड़की है ना इसकी तरह आप भी खूबसूरत हो जाए. और देखें जी किस तरह खूबसूरती आपको मिलती है जब आप ही व्हाइट जी बिल्कुल विटामिन सी का ये व्हाइट एश का

फेस वॉश लगाने वाले हैं, तो ये इतना ब्यूटीफुल सा फेस वॉश आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे। तो आप जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए, मिल रहा है तो परचेज कीजिए। दिल लिखती हैं कि टॉपिक इंटरनेट हो, मोबाइल को चार्जिंग पर लगा हुआ चलाती रहूंगी। यासीन खंडा में सुन रहे हैं, हेलो जी। इमरान अली अब्बासी हमारे साथ हैं, थैंक यू। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि गई हुई चीज कहाँ वापस मिलती है, आप कह रही हैं कि आपको खूबसूरती वापस मिल जाएगी वाइट एज लवली क्रीम लगाने से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस बात को कहने ना एक ठोस सबूत है मेरे पास, वो ऐसे क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ना वो वाली खूबसूरती मिल जाती है जो हमारी कहीं खो चुकी होती है। अगर आपकी स्किन कहीं डल हो चुकी है, आपके चेहरे पर एक्नी आ चुके हैं, एक्नी निशानात आपके चेहरे पर छोड़ गए हैं, आपको लगता है कि ये तो भाई कभी जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये जा सकते हैं जब आप कोई अच्छा वाला तो इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिससे कि आप लोगों की खूबसूरती को उसकी जरूरत हो। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने

0: ईरान ऐं अमेरिका विच में तकरार शिदत करे वियो। अमेरिकी सदर ट्रम्प जे ईरानी बिजली घरनि खे निशानो बणाइण वारी धमकी बाद अरब मुल्कनि में हाई अलर्ट। ईरान जो बि हमलनि जी बंदिश ताईं आबना हर्मुज खे न खोलण जो ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रम्प चयो आहे त तेहरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरनि ऐं पुलनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान अमेरिकी सदर जे बयाननि खे रद्द कंदे चयो आहे त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं, धमकियुनि खां डिॼण वारा न आहियूं।
1: बलूचिस्तान में खारिजनि ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन शाबान में वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज, पुलिस ऐं एफ़सी जो गडि॒यल ऑपरेशन शाबान जारी आहे। सिक्योरिटी ज़रनि मूजिब फोर्सेज जी कार्रवाई में वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 88 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दनि जे थागनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि।

0: जे मैदान में सियासत कयो, असांजे ॿारनि जी तोहीन न कयो। इदारनि ते सियासत करण जो कंहिंखे बि हक़ न आहे। मौलाना ताहिर अशरफ़ीअ जे पैगाम अमन कमेटी जी वफ़द सौदो, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध जूं रिवायतूं ऐं मज़हबी हम आंगी पाकिस्तान लाइ मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफ़ी चयो त फोर्सिस जा जवान पघारनि लाइ न पर सरहदनि ते असांजी हिफ़ाज़त लाइ क़ुर्बानीूं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध में सदाई मोहबत ऐं अख़वत जो पैगाम ॾिनो वेंदो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त अमुन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए इस्तक़ाम माणे सघिजे थो। शर्जील इनाम मेमण चयो त वतन लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि ते फ़ख़्रु आहे।
1: पंजाब असेंबलीअ जे स्पीकर मलिक अहमद खान जो मौलाना फज़ल रहमान खां शहीदनि बाबति बयान ते माफ़ी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो त दहशतगर्दनि जो को बि मज़हब न आहे हूंदो, क़ौम दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ते मुतफ़िक़ आहे। मौलाना फज़ल रहमान जो शहीदनि बाबति बयान अफ़सोसनाक आहे, मौलाना फज़ल रहमान दुरुस्त न आहे, माफ़ी वठे।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर जी मुलाकात। वज़ीर आज़म जे चौमासे जे वस कारण दौरान सूबनि सां राब्ता वधीक बहितर बणाइण जी हिदायत। NDMA चेयरमैन वज़ीर आज़म खे मूनसून बरसातनि दौरान तयारियुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। अॻवाट इतलाउ वारो निज़ाम फाल बणाइण बाबति बि आगाही ॾिनी वई।

0: वधंदड़ आबादी मुल्क लाइ वॾो चैलेंज आहे। मुल्की तरक़ी ऐं वसीलनि जे बहितर इस्तेमाल लाइ आबादी जो मुनासिब हुजणु ज़रूरी आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त वधंदड़ आबादी ऐं मौसमियाती चैलेंजेस खे वक़्त सिर क़ाबू करणु ज़रूरी आहे। मुल्क जी वधंदड़ आबादी वसीलनि ऐं मैशियत ते ॿार बणजी रही आहे।
1: वफ़ाकी आईनी अदालत SPSC ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम मुअत्तल करे छॾियो। इम्तिहान में कामयाब थींदड़ उमीदवारनि जा इंटरव्यूज़ रोकण बाबति सिंध हाई कोर्ट जो हुकुम बि मुअत्तल। फेल थियल उमीदवारनि जा पेपर ॿीहर। हुकुमनामे ई रिलीफ ॾेई छॾियो आहे।
0: कराची में फुर्म अज़मत ते क़तल थियल डॉक्टर आकाश वारे केस में मकभराई टे जवाबदार गिरफ़्तार। गिरफ़्तार जवाबदारनि में उस्ताद बि शामिल। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे DIG साउथ चयो त सेफ सिटी कैमराउनि जी मदद सां जवाबदारनि ते पहुता आहियूं। ॾोह लाइ ॿिनि मोटरसाइकल्स, हिक कार खे इस्तेमाल कयो वियो। टिनि जवाबदारनि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। टिनी जो वास्तो हिंदू कम्यूनिटी सां आहे। ॾोह लाइ इस्तेमाल थियल हथियार कया आहिनि। फुर वारी रक़म बि मिली आहे।

0: शहर मैरापुर वेझो पीर वसण लिंक रोड ते डुआरन जो पुलिस पिकेट ते हमलो गोली लगण सबब एहलकार परवेज राजपुर सख्त जख्मी गणती वारी हालत में नवाबशाह मुंतकिल वाके बाद जवाबदार फरार पुलिस इलाइके में जवाबदारन जी गोला शुरू करे छी।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान DFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो DFM 90.4।

तो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जनाब GFM 88.8 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण बहरावपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डेज इन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है

YJH Beauty Products and A-Skin Beauty Products ke Tawan se. Bilkul jee, to program mein aap logo ko welcome and khush aamadeed. दिन कहा जाता है आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में. तो जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया, जिन लोगों ने भाई स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ साथ मौजूद रहे, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद. आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से जो है ना आप हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं. खूबसूरती को बढ़ाना और खूबसूरती को मेंटेन करना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाते हैं लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना आपको नहीं आता जनाब, यकीन जाने कि आपकी जो खूबसूरती है ना वो थोड़ी सी जो है वो संभल नहीं पाएगी और आपको आगे जाकर उसके थोड़े से नुकसानदेह असरात भी सामने नजर आएंगे. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी खूबसूरती हमें मिले लेकिन वो खूबसूरती मेंटेन भी होती रहे, तो आपके पास जो हम आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं उनकी क्या इस खास क्वालिटीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बेहतर से भी बेहतरीन वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे. तो पहले मैंने आप लोगों को YJH Beauty प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो फिलहाल अभी जो है आप लोगों को बारी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है. ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हिसाब से बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसी क्रीम है से भाई फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है. इसको अगर आप परचेज करेंगे ना, जब आप क्रीम परचेज करने के लिए जाएं तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि क्रीम के डब्बी के ऊपर जो है ना डॉक्टर का फोटो है. डॉक्टर का फोटो इसलिए ये है ताकि ये चीज आप लोगों के जहनों में क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट कोई ऐसा आम प्रोडक्ट नहीं है, मामूली प्रोडक्ट नहीं है. ये फुल जो है ना इसे मेडिकेटेड तरीके से तैयार किया गया है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और इसे वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है और सेंसिटिव स्किन रहने की वजह से वो कोई भी प्रोडक्ट इजीली जो है ना वो सूट नहीं करता उनके चेहरे के ऊपर, वो लगा नहीं पाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान है. तो भाई आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो

की स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए काफी है। तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो 18 साल की उम्र के बाद ही लगाइएगा। ऐसा नहीं कि सोचें कि भाई हम बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चे नहीं लगाएं, क्योंकि ये नाइट क्रीम है, तो नाइट क्रीम है उन लोगों के लिए होती है जो टीनेजर्स हैं, 18 साल के बाद उनकी उम्र जो है वो जैसे उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी में, आपके चेहरे में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है, तो उन चेंजिंग को, उन एक्नीज हो या फिर जिस तरह की भी चीजें आपकी स्किन के साथ आ जाती, उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए और आपकी स्किन को हमेशा ब्यूटीफुल बनाने के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डिजाइन किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, इसके अंदर इस तरह के सीरम्स एड किए गए हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, आपकी स्किन को क्लीन रखने के लिए, आपकी

स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए काफी है। तो डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश है ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इतनी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप वाकई कोई नॉर्मल सी व्हाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही मुनासिब सी कीमतों में आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप बस जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूम लीजिए, परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी से परचेज कीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बुड़ी 315-79-595।

ओके जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन सा गाना मैंने लिस्ट में लगाया है जो कि मास्टर मंजूर साहब की आवाज में उन लोगों को डेडिकेट जाता है जो मास्टर मंजूर के गाने की फरमाइशें करते हैं। अच्छा, अब्दुल कयूम शेख हमारे साथ है। सिर्फ मोबाइल चार्ज हो मगर नेट नहीं हो तो ऑप्शन बेहतर है इस से, नेट हो और मोबाइल चार्ज ना हो तो ये बेस्ट है। अब मुझे बात समझ गए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और अब्दुल कयूम शेख, ओके जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ साथ। तो जिन लोगों ने अभी सुना प्रोग्राम स्टार्ट किया उनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं आपके पास जो है ना सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का चांस है आप लोगों को, तो आप मुझे बताएंगे अगर आपका फोन जो है उसकी बैटरी 100% चार्ज हो और आपके पास इन इंटरनेट ना हो, या फिर आपके पास इंटरनेट हो और आपका मोबाइल फोन जो है वो सिर्फ

0: करण जी, कुछ लोग हमारी जिंदगी में वाकई ऐसे होते हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी में गुजारा तो क्या हम सोच भी नहीं सकते कि उनके बिना हम रह भी पाएंगे। तो ऐसे लोग अगर आपके जिंदगी में भी हैं तो जरा उनका कदर कीजिए और उनको कोशिश करें कि वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहें। और ये जी आबिद, आबिद परियास्ती हैं और आपको
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: निज़ाम फाल बनाइण बाबत बि आगाही डि॒नी वई।
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जी मुज़फ़राबाद में पार्टी जी टिकट होल्डर्स ऐं अॻवाननि सां गॾिजाणी आज़ाद कश्मीर थींदड़ चूंडनि ते ॻाल्हि ॿोल। पार्टी उहिदेदारनि ऐं टिकट होल्डर्स बिलावल भुट्टो सरदारी जे मसलनि ऐं चूंड मुहिम बाबति आगाही डि॒नी। बिलावल जे अॻवाननि खे आवाम सां राब्तनि में रहण जी हिदायत।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
5: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

फौरन से आप लोग जीरो पे चले जाते हैं, जबकि पर्सनली मुझे ये सब बहुत अजीब लगता है। वो जो रब है वही सब है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और आपके तमाम तर मसाले का हल जो निकलना है वो जाए नमाज से निकलना है। फिर यहाँ वहाँ इधर उधर इंसानों के पीछे क्यों भागते हैं आप लोग?

कोशिश यही करिए कि रब से अगर आप जुड़े, अगर आप रब के सामने झुकेंगे, रब आप को दुनिया वालों के सामने कभी नहीं झुकने देगा। यही आज का पैगाम आप सबके नाम। अस्सलाम वालेकुम, SFM88 के लाइव स्टूडियो से आपके साथ आरजे गुलनाज, और शाम 5 बजे तक ये साथ इंशाल्लाह अजीज ऐसे ही जारी और सारी रहने वाला है। इस दौरान होनी है आपसे ढेरों ढेर गपशप, कुछ अपने दिल की कहेंगे, कुछ आपके भी सुनेंगे जनाब। खुशियां, इज्जत और सुकून

और ये बताने के लिए आपने डायल करना है 03136161568 और लाइव कॉल नंबर के बाद बता दूं एसएमएस का तरीका मोबाइल के राइट में मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिए

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

कार की हैरानी से पूछा, शमीम बीबी आपकी बीवी कैसे हो सकती है? फाइल के मुताबिक तो शमीम बीबी बेवा खातून है।

طيب और मजे की बात ये पता है हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं, हमने उसको ये भी कहना है गुस्से में, जिस हद तक बुरा भला कह सकते हैं।

0: ही वजह होती है कि वो मसला सुलझने की बजाय ना उलझता रहता है, मजीद बिगाड़ की जानिब जाता है, खराबी की तरफ जाता है। और एक चीज मैं और भी बताऊं, आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या जो भी कोई आपके साथ रूटीन लाइफ में मोस्टली ज्यादातर मौजूद होते हैं आपके आसपास ही, ये उनके साथ ना एक डील कर लें, डील ये कर लें आप उन लोगों से कि अगर कभी मुझे शदीद वाला गुस्सा आए और अगर मैं गुस्सा में रिएक्ट करूं तो आपने आगे से डबल रिएक्शन नहीं देना है, आपने मुझे नजरअंदाज करना है। और कभी आप लोगों को शदीद वाला गुस्सा आ रहा होगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगा या ऐसे ही करूंगी, मजे की बात यह इससे झगड़े नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपके किसी दोस्त से झगड़ा हो रहा हो, आप शदीद गुस्से में चिल्ला रहे होंगे, अगर वो उस वक्त खामोश रहेगा या उसको वो कमिटमेंट आपसे जो की होगी वो याद आएगी, तो वो शोर नहीं करेगा, ठीक है। जब वो शोर नहीं करेगा झगड़ा ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं,
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इसके मौजूदा हालात में इलेक्शन आजाद कश्मीर में लड़ना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटते। हम जानते हैं कि शायद कुछ लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अब जीबी में भी जीत के आए हैं और उनका सोच ये था कि अगर हालात ऐसे होंगे तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की क़यादत उस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकेंगे जैसे गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन किया, लेकिन ये तो उनका गलतफहमी है। मैं यहां हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। उम्मीद है कि मसला हल हो, लेकिन हल हो या ना हो मैं अपने कश्मीरी आवाम के साथ रहूंगा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारकुन के साथ, आप मेरे अहदेदारों के साथ, और इलेक्शन तक हमारा साथ है। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद हम मिलके हुकूमत भी बनाएंगे और तमाम हालात को हम संभालते रहेंगे। ये बहरान जो है, ये क्राइसिस जो है, ये आज के नहीं, एंड आई थिंक इनके मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो आर्ग्यूमेंट ये जरूर है कि ये तो एक मैन मेड क्राइसिस है, ये कोई गैर सियासी हैंडलिंग की वजह से और गैर नामुनासिब बयानात की वजह से ये क्राइसिस इस पोजीशन पे आया है। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि दिस इज फेडरल मिनिस्टर्स मेड क्राइसिस, उन्हीं ने अब इसका ऐसे किरदार अदा करना है जिससे हम सब रास्ता निकाल सके। लेकिन अंडरनीथ देयर डेफिनेटली एंडेमिक इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। मैं अभी इलेक्शन जीत के आया हूं गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान में मैं अपने जो मंशूर हैं, अपना जो मौकिफ है, अपना जो नजरिया है, किसी जैक कमेटी का होने से पहले, ये तो 2022-23 में, तो 2020 में, 2019 में, उससे पहले जो मंशूर बना 2020 के गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से, मेरा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नारा है कि हक हकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार। ना शायद दूसरों का ज्यादा एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अपना नजरिया है, अपना मंशूर है। गिलगित बल्तिस्तान का कॉन्टेक्स्ट तो अपनी जगह, उनका अपना ही जदोजहद है और अपना एक तवील जदोजहद है। आजाद कश्मीर का कॉन्टेक्स में हम तो नस्ल दर नस्ल जो हक हकमियत के जदोजहद है, आलमी सतह पे, बैरून मुल्क भी, इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स में भी, और मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लड़ते आ रही है। हमने जो आलमी सतह पे हक हाकमियत के जदोजहद, आजाद कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, मिलके जो जदोजहद हम लड़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वो राय शुमारी की सूरत में, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जदोजहद की, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जदोजहद की सूरत में, वो जदोजहद कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लड़ा बहैसियत आपका वजीर आजम, बहैसियत आपका वजीर खारजा, वो जदोजहद शहीद मोहतरमा बैनर्जी भुट्टो ने लड़ी थी बहैसियत आपके वजीर आजम, शहीद बीबी ने तो आजाद कश्मीर की ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाई थी ओआईसी में, कायदे अवाम ने जैसे यासीन साहब कह रहा था पाकिस्तान के अंदर ये सदारती निजाम ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे जो आजाद कश्मीर चलता था वो निजाम खत्म करके आपको पार्लियामानी निजाम दे दी, और जो आपके हक हाकमियत का पाकिस्तान के अंदर का जिदोजहद उसका भी क्यादत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और आलमी सतह पर कश्मीर के हक हकमियत के जदोजहद उसका भी क्यादत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने की है। अब मौजूदा सूरत हाल में हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं जहां तक आपका आलमी सतह का जदोजहद है। और जब मैं इस मुल्क का वजीर खारजा था, सबसे नौजवान वजीर खारजा था, लेकिन फिर भी चाह वो आलमी यूनाइटेड।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: yeah!

अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: ओ सदका।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

बिलावल भुट्टो जरदारी पाक फौज के रेड लाइन करार डेई छो कश्मीर मसले के हल लाए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जोड़ने की भी तजवीज पेश। आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी वड़न के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी तो पाक फौज असाजी रेड लाइन है का भी गाल बर्दाश्त न कंदी आलमी साजिशन के समझण पवन लफ्जन की दुरुस्त चूंड करनी पवंदी कश्मीर में दहशतगर्दी वाली सियासत की हिमायत न कंदी मौजूदा हालतों जो मुकाबलो ताकत से नथो कर सकते जिम्मेवारी जो मुजाहरो करो पवंदो मौजूदा बहरान एक वफाकी वजीर के करे थियो है वफाकी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ही हल करो पवंदो मोदी

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: हाय हाय हाय।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फिलहाल भुट्टो जरदारी पाक फोर्स के रेड लाइन करार दई छो। कश्मीर मसले के हल लाय ट्रुथ एंड रिकंसीलिएशन कमीशन जोड़ की भी तजवीज पेश। आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी गोड़न के खिताब कंदे बिलाल भुट्टो जरदारी चो पाक फौज असांजी रेड लाइन है, उन खिलाफ का भी गाल बर्दाश्त न कंदासी। आलमी साजिशन के समझण पवंद, लफ्जन के दुरुस्त चूंड करनी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वाली सियासत की हिमायत न कंदासी। मौजूदा हालतन जो मुकाबलो ताकत से न थो करे सकजे, जिम्मेवारी जो मुजाहरो करणो पवंदो। मौजूदा बहरान एक वफाकी वजीर के करे थियो आहे। वफाकी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ही हल करणो पवंदो। मोदी सिंतास मायदे ते हमलो करे रहियो आहे, असां सब जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं। सिंधु जे पाणीअ ते को बि टार न कंदासीं।

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252578 6।
1: जी हा 2315525786
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4
3: आयो सब्जी वालो ताजी सब्जी खाओ अदा गोश्त महंगो मुर्गी महंगी मच्छी महंगी ताजू सब्जी खाओ सेहत बढ़ाओ आयो

आप सुन रहे हैं 3FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हल करणो पवंदो। मोदी सिंध तास माहिदे ते हमलो करे रहियो आहे। असां सभु जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं। सिंधु जे पाणीअ ते को बीठा न कंदासीं।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

खासे चयो त अल्ला ताला पाकिस्तान खे अणगणियन कुदरती वसीलन सां नवाज़ियो आहे। हर ॾींहुं रात मेहनत करे मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करे रहिया आहिनि। जदीद टेक्नोलॉजी न हुजण सबब पाकिस्तान लाइफ स्टॉक जे शोबे में खिते जे ॿियनि मुल्कनि खां पोइ ते आहे। ज़रात ऐं लाइफ स्टॉक जे शोबे में महिनत सां कम कयो वञे त हिकु साल अंदर मईशत बहितर करे सघिजे थी। फिलहाल भुट्टो सरदारी पाक फौज खे रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसइले जे हल लाइ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जोड़ण जी भी तजवीज़ पेश। आज़ाद कश्मीर जे शहर मुज़फ़राबाद में पार्टी अॻवाननि खे ख़िताब कंदे फिलहाल भुट्टो सरदारी चयो त पाक फौज असांजी रेड लाइन आहे, हुन ख़िलाफ़ का बि ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं, आलमी साज़िशनि खे समझणो पवंदो, लफ़्ज़नि जी दुरुस्त चूंड करणी पवंदी, कश्मीर में दहशतगर्दी वारी सियासत जी हिमायत न कंदासीं, मौजूदा हालतुनि जो मुक़ाबलो ताक़त सां नथो करे सघिजे, ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो, मौजूदा बुहरान हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जे करे थियो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत मसइलो हल करे, कश्मीर जो मसइलो कश्मीर में ई हल करणो पवंदो, मोदी सिंध तास माइदे ते हमिलो करे रहियो आहे, असां सभु जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं, सिंधु जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदासीं।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: It's 8:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक फौज के रेड लाइन करार दई छो कश्मीर मसले के हल लाए ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन जोड़ की भी तजवीज पेश। आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी वारन के खिताब कदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चो तो पाक फौज असाजी रेड लाइन है उन खिलाफ का भी गाल बर्दाश्त न कदी आलमी साजिशन के समझण पवन लफ्जन की दुरुस्त चूंड करनी पवी कश्मीर में दहशतगर्दी वाली सियासत की हिमायत न कदी मौजूदा हालतन जो मुकाबलो ताकत से न तो कर सकते जिम्मेवारी जो मुजाहरो करो पवो मौजूदा बहरान एक वफाकी वजीर के करे थे है वफाकी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ही हल करो पवो मोदी सिंध तास मायदे ते हमलो करे रहो है असा सब जवाब देने लाय तैयार आयो सिंधु के पानी ते को भी ठहर न कदासी।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।